0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: आज़ाद कश्मीर चूंडन जो टियों मरहलो अज थी रो आए। पुंछ डिवीजन के बिन जिलन के चैन तक पोलिंग अज थी। जिले बाग के टिन हवेली के एक तक चूंडू थी रही आन। जडे त 82 उम्मीदवार मैदान में लथल आन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सख्त मुकाबलो। पोलिंग जो वक्त 8 वगे का शाम 5 वगे तई जारी रहो। मक्का दिफाई मुआदे जो मकसद कें मुल्क खिलाफ कार्रवाई न पर कौमी सलामती के चैलेंज के मुंह दियण के लिए स्ट्रेटजिक सहकार मजबूत बनायण खिते में अमन इस्तेहकाम खुशहाली के हथी वठायण आए। नायब वजीर आजम परवेही वजीर इसाक डार खिते में अमन तरक्की जो खुशहाल

आहे। तमर जा ॿेला बहाल करण जे मक़सदनि सां उसूली तौर मुतफ़िक़ आहे। मौजूदा फिज़िबिलिटी इन्हनि मक़सद करे ईरान वटि फ़ौज खे पघारूं ॾियण लाइ पैसा न आहिनि। फ़ौजी कार्रवाई बदिरां ईरान ते मुआशी दबाउ विझी रहिया आहियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवणु आहे त ईरान सां महदूद सतह ते ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। ईरान में महांगाई तमामु घणी आहे, उन्हनि वटि पैसा न आहिनि। ट्रंप आबनाए औरंग खुलण ते फतह जो ऐलान करण वारो हो। अमरीकी सदर एटमी मुआदे बिना पोइते हटण लाइ तयार हो, पर ईरान जे नवनि मुतालबनि ट्रंप खे मुश्किल में विझी छडि॒यो। वॉल स्ट्रीट मूजिब आबनाए औरंग खोलण लाइ ईरान ट्रंप इंतज़ामिया अॻियां छह शर्त रखी छडि॒या आहिनि, जिन में बहिरी नाकाबंदी ऐं पाबंदी ख़तम करण बि शामिल आहिनि। तहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाए औरंग न खुलंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकर चयो आहे त पंहिंजे मौक़ुफ़ ते क़ाइम आहियूं। ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल कया वञनि। ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तम कई वञे। पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾिनो वञे ऐं ईरान खे धमकियूं ॾियण जो सिलसिलो बंदि कयो वञे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई सां सदर मसूद पज़ुशान जी मुलाक़ात। ईरानी मीडिया मूजिब मुलाक़ात में मुल्क जे वसीलनि जे तहफ़ जे तरीक़ेकार, अस्करी अघ भराई, परडे॒ही भाईवारनि सां इक़्तसादी राब्तनि खे वधाइण जे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। मोहसन रज़ा ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो नुमाइंदो मुक़रर। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई मोहसन रज़ाई खे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो नुमाइंदो मुक़रर कयो। अरब मीडिया मूजिब मोहसन रज़ाई 1981 खां 1997 ताईं पासदार इनकलाब जो सरबराह रही चुको आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण सोशल मीडिया ते मुबैना किरदार कशीअ ख़िलाफ़ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वटि तहरीरी शिकायत दाख़िल कराए छॾी। शर्जील मेमण वकील मार्फत NCCIA कराची ज़ोन जे डिप्टी डायरेक्टर खे बाज़ाबता तौर तहरीरी शिकायत जमा कराई। सोशल मीडिया ते इल्ज़ाम हयो वियो त गुलिस्ताने जौहर कराची में वाक़ियो गेस्ट हाउस शर्जील मेमण जी मिल्कियत आहे, जिते मुबैना तौर मीर रज़ा खे तशदुद करे क़तल कयो वियो हो। शर्जील मेमण पारां दाख़िल करायल दरख़्वास्त में मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो आहे त मूं वटि ऐं पुट रावल मेमण ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ते कूड़ा, बेबुनियाद ऐं बदनीतीअ ते ॿधल इल्ज़ाम हया पिया वञनि। जांच कराई वञे, असां मुकमल तावन कंदासीं। मीरपुर ख़ास में घर अंदरि गोलियूं लॻण सबबि मारिजी वियल नारी सवेरा लगारी ऐं नौजवान फैज़ान राजपूत जो वाकियो नओं रुख इख़्तियार कयो हो। वाकिए खां अॻु फैज़ान राजपूत पंहिंजे मोबाइल फोन में वीडियो बयान रिकॉर्ड करे पुलिस खे कार्रवाई न करण जी अपील कई आहे। नौजवान लुड़क हारींदे पंहिंजे वीडियो बयान में चवे थो त सवेरा संदसि निकाह में आहे। निकाह जी वीडियो मोबाइल में मौजूदु। सवेरा पाण मूंखे घुरायो, जंहिं छोकिरीअ सां मुंहिंजी अॻु में मंगणी थियल हुई, आउं हुन खां माफ़ी घुरां थो। कुनरीअ भर सां लम्स यूनस जी शागिर्दियाणी भेण समेत मुबैना तौर अगवा थी वई। ॻोठ मोहम्मद शरीफ़ वासण 18 सालनि जी सानिया बलोच ऐं 10 सालनि जी ज़ोया खे हथियारनि जे ज़ोर ते मुबैना तौर अगवा कयो। नारियुनि जे पीउ अब्दुल गफ़ार जे फरियाद ते नबीस रोड थाणे ते चइनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। फरियादीअ चवण आहे त धीअरुनि खे ॻोठ वठी अची रहियो होसि त झुडो नबीस रोड ते टावर लॻ जवाबदार आकिल मोहम्मद हनीफ़ मोहम्मद रमज़ान पीर बख़्श पिस्टल जे ज़ोर ते गाॾी रोके खेन अगवा करे खणी विया आहिनि। ऐं हैदराबाद जे इलाइक़े सचल सरमस टाउन में रोलू कुते ॿारड़े खे ॾाड़े ज़ख़्मी करे छडि॒यो। UC 95 जे ॻोठ तोकल मीरजत में कुते चेन वरियन जे मासूम ॿारड़े एहसान मलाह खे मुंहं में चकणी ज़ख़्मी करे छडि॒यो। ॿारड़ो इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनक असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जे टिन ऐं हवेली तूं आहिनि, ॿियासी उमेद सिंध हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत जे सिंध बैराज मनसूबे जी फिज़िबिलिटी ते एतिराज़ वारींदे कम रोकण जो मुतालबो करे छॾियो। सिंध हुकूमत बैराज जी अॾावत जे अहम नुक़्तनि ते फिज़िबिलिटी स्टडी ऐं टेक्निकल पासनि खे अणपूरो करार ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त नओं ज़खीरो दरिया जे कुदरती लाहे ऐं वहिकरे खे तब्दील कंदो। नओं ज़खीरो अॻिते हली हतमी मंज़ूरी ऐं मनसूबे जो मुकमल फ़नी मुतालो हाइड्रोलॉजिक हाइड्रोलक टेक्निकल जांच माहौलियाती जाइज़ो वरितो वञे जे ख़तरनि में अभ्यास तेसि ताईं सिंध बैराज मनसूबे जी मंज़ूरी न ॾिनी वञे ऐं कम शुरू न करायो वञे। KTN न्यूज़ मनसूबे जे तफ़सीलनि जा दस्तावेज़ हथ करे वरिता। हथ कयल दस्तावेज़नि मूजिबि सिंध बैराज जे मनसूबे बाबति सिंध जे आपाशी खाते तूफ़ान हिकु मुकमल ब्रीफिंग तयारु करे सिंध हुकूमत खे पेश कई वई आहे। आपाशी खाते जी ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो आहे त सिंध बैराज अहम मनसूबो आहे पर इन्हीअ ते फिज़िबिलिटी स्टडी ऐं फनी पासनि समेत समूरनि ज़रूरी घुर्जूं अणपूरियूं आहिनि। सिंध हुकूमत सिंधु डेटा खे सामूंडी लूणियाट ऐं तबाही खां बचाइण तमर जा ॿेला बहाल करण जे मक़सदनि सां असूली तौर मुतफ़िक़ आहे। मौजूदा फिज़िबिलिटी उन्हनि मक़सदनि खे पूरो नथो करे।

ईरान वट फौज के पगारू डेण लाइ पैसा ना आहिनि। फौजी कार्रवाई बदिरां ईरान ते मुआशी दबाव विझी रहिया आहियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो चवण आहे त ईरान सां महदूद सतह ते ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। ईरान में महांगाई तमामु घणी आहे, उन्हनि वटि पैसा न आहिनि।

0: ईरान जो अमेरिका खां बहरी नाकाबंदी ऐं पाबंदियूं ख़त्म करण जो मुतालबो। अमेरिकी अख़बार दावा कई आहे त सदर ट्रम्प अपना हर्मुज खोलण ते फतह जो ऐलान करण वारो आहे। अमेरिकी सदर एटमी मुआदे बिना पोइते हटण लाइ तयार हो, पर ईरान जे नवन मुतालबनि ट्रम्प खे मुश्किल में विझी छडि॒यो। वॉल स्ट्रीट मूजिब अपना हर्मुज खोलण लाइ ईरान ट्रम्प इंतिज़ामिया अॻियां 6 शर्त रखी छडि॒या आहिनि, जिन में बहरी नाकाबंदी ऐं पाबंदियूं ख़त्म करण जो बि शामिल आहे। अठहट मोरीअ में पुछड़ी जे आबादगारनि जो पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। जाम लगारी शाख ऐं चुटकी गुजरवाह जे पुछड़ वारनि आबादगारनि चयो त आपाशी अमलदार पैसनि एवज पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि। पाणी न हुअण सबबि इंसान तोड़े जानवर उञ मरी रहिया आहिनि। पाणी फराम करे मुआशी बदहालीअ खां बचायो वञे।
1: KTN News।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
4: GAFM 91.6।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: डूबे थे आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू नहीं होता।

संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: आप सुन रहे हैं
4: डी
3: एफ एम एफ एम.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क

भी वफा कुछ नहीं, गलत को मिलती सजा कुछ नहीं है, जिसके पास न ताकत उसकी परवाह कोई नहीं है। आप दिलों में लेके बैठना फिकर, किसी की जान काश नहीं।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे

0: लाश जी सुञाणप मौजूद लाश जी सुञाणप रब रखियो मारफाणी दे नाल रब बदनाम मथस इनाम रख लथस चीन में सामूंडी तूफान डॉल्फिन तबाही मचाए छी मां वधीक शाह मौजूद डॉल्फिन सबब सूबे जी जान के वधीक शहर जोहान में तेज बरसात नुकसान थियो तकरीबन
1: ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा।

0: आप सुन रहे थे जीए अकबर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जदीद टेक्नोलॉजी
3: सोना से स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
4: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो
5: कैसे ही आप आई हो चुकी जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल टिप टिप सेट खुले एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरी सियासत मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरी पूरी एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है क्योंकि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 PM आपका मेरा साथ रहता है ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से जो कि आज भी जारी सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो 11:17 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग क्योंकि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं चाहे आप बस में हैं ट्रक में हैं रिक्शा में हैं कार में हैं बाइक में हैं जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट लेट द नेवर अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफ बब्बा जी खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत है मतलब तो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मनी हैव इट ऑन सैटरडे हैव अ बर्थडे टू यू इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको जाएंगे मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहे आमीन सुमा आमीन तो मेरी आवाज जिन जिन गलियों और चौबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे बरसारों ये करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिगम अहलन वसहलन मरहबा बखेर आगले जी आया नू सब बिस्मिल्लाह वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है

तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उन सबसे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना इंक्लूड करने जा रहे हैं तो वन एंड ओनली फरीहा परवेज की आवाज में। सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

ओके जी ड्रग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और उसको सेंड कीजिए 8881 पे. और कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा जो कि होगा FM88, ठीक है जी. FM88 के पेज के ऊपर आप लोग आते हैं, आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं. तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग मुझे और प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, वो हम आपको बताएंगे एक अदद ब्रेक के बाद. और जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारे दो अदद सेगमेंट होते हैं जो कि होगा अब से एक ठीक ब्रेक के बाद, एक अदद कमर्शियल ब्रेक के बाद, ठीक है. तो जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें लिसनर्स आएंगे कॉल पे और दिखाएंगे अपने सुर, लगाएंगे अपने सुर और गाएंगे एक अच्छा सा गाना और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. इसके साथ साथ जो हमारा अगला सेगमेंट होता है अगले घंटे में, दैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में होगा ये कि एक अदर टंग ट्विस्टर जो कि थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा फनी होगा और वो टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे और आप में से जो बंदा अच्छा अच्छा और सही सही बोल देगा वो विन कर जाएगा उस अगले सेगमेंट को जिसका नाम होगा बोलो तो माने, ठीक है. तो ये सब कुछ होगा यहीं पे होगा. तो इसी के साथ हम एक और गाना प्ले करते हैं जी और इस एक और गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. सो आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान वधाए.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज,
2: सिंध के माथे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर रहो।
1: इन मिट्टी जा रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याप वधी का मान वधायन लाए तमासा गड़ाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणु छटाई करण में आसान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याप शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

इसी के साथ एक गाना प्ले करते हैं, गाने के साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन करते हैं। गाना बहुत खूबसूरत, इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे, साथ साथ टंग ट्विस्टर भी बताऊंगी। एंड हियर कम्स बिलाल सईद विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: बागी जी कड़क कड़क कौवा कच्चे कुएं के किनारे काए काए करता रहा। ठीक है, ये कहेंगे कड़क कड़क कौवा कच्चे कुएं के किनारे काए काए करता रहा।
1: इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट होने वाला है डैड इज बोलो तो माने, जिसमें आप लोगों से टंग ट्विस्टर और टंग ट्विस्टर जो कि मैंने आपको बता दिया है आप लोग कह के दिखाएंगे, एंड ये टंग ट्विस्टर जो कि आप लोग कहेंगे, जो बंदा ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छा और सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून्ड।

किसान पार्टी में मुकाबलो, पोलिंग शाम 5 वगे ताई जारी रहंदी। अठहठ मोरिए में पोछड़ी के आबादगारन जो पानी खोर खिलाफ एहतजाज, जाम लगारी शाख ए चुटकी गुजरवा जे पोछड़ वारन आबादगारन जो तापाशी अमलदार पैसन एवज पानी विक्रो कर रहा है। पानी न होने सबब इंसान तोड़े जानवर उन मरी रहा है। पानी फराम करे मुआशी बदहाली का बचाया वजे।

मेहड़ भरसां इंडस हाईवे ते गुल मोहम्मद आयल लाश जी सुञाणप थी वई। पुलिस मूजिब लाश जी सुञाणप रब रखियो मारफाणी जे नाले सां थी आहे। मारजी वियल रब बदनाम।

पाणी हेठ सांजरो बोजदार वारे इलाइक़े में कंडीर शाह खे ॻोठ बंगल वटां घारो लॻो। सवें एकड़नि ते पोखियल सारेन ऐं कपाह जो फसल पाणी हेठि ॻोठाणनि जो चवणु आहे त पाणी वधण सबबि भरपासे जे घरनि ऐं रिहायशी इलाइक़नि में दाख़िल थियण जो ख़दशो आहे। ऐं चीन में सामूंडी तूफान डोल्फिन तबाही मचाए छॾी, 10 लख खां वधीक शहरी महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतकिल। चीनी मीडिया मूजिबि सामूंडी तूफान डोल्फिन सबबि सूबे जी चांग खे वधीक मुतासिर कयो। शहर युवान में बि तेज़ बरसाति नुक़सान थियो। तक़रीबन 150 खां वधीक उॾामूं बि मुलतवी कयूं वयूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज

0: ओके गाना खत्म हो रहा है, इसी के साथ हम कॉलर लेते हैं जी. नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे कौन है कहाँ से. जी हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: ये इश्क का दरबार है, गमों को पालना बेकार है, किसी के गम को बांटना प्यार है, जिंदगी गुलजार है.
0: अरे वाह,
1: हमको तुमसे प्यार है, अपनी बेटी को अल्ता बलो जाग जाने का सलाम है, मोहब्बत कबूल.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम.
1: कैसी हैं आप बेटा.
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. जाग जानी अंकल, आप कैसे ठीक ठाक.
1: अल्हम्दुलिल्लाह. पोएट्री से पहले पूछूंगा कि नेहा से मुलाकात होती है.
0: नेहा से मुलाकात नहीं होती है. और
1: चलो अगर बात होती है तो सलाम मेरी बेटी को कहते.
0: ना मुलाकात होती है
1: ना बात होती है. नाम इश्क से है मुझे. ओहो कब नाम है इश्क से है मुझे. इश्क इल्जाम इश्क से है मुझे. मोहब्बत का कारोबार मेरा है मोहब्बत. वो आप कहती है ना कि चार से फतेह करते हैं हम लोगों के दिलों को. हम वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं हटते. फिर मौला अली से नस्बत इतनी मैं अकेले ही लश्कर पे छा भी सकता हूँ. वही बात है कि है मोहब्बत का कारोबार मेरा. फायदा दाम इश्क से है मुझे. देखे आवाज छोड़ देता हूँ अंजाम इश्क से है मुझे. डर के आगाज छोड़ देता हूँ अंजाम इश्क से है मुझे. प्यास पानी से भी न बुझ पाई अरे आसरा जाओ मैं इश्क से है मुझे. कूद कर सबने खुदकशी कर ली मसाला बाव में इश्क से है मुझे. उम्र तोहफे में मिल न जाए नकी डर तो इनाम इश्क से है मुझे. कब नाम है इश्क से है मुझे. इश्क इल्जाम है अपना बहुत सारा. वो कहते हैं कि अल्लाह आपको अपने मान में रखे. मदीने वाली सरकार आपको बहुत सारी खुशियां.
0: थैंक यू सो मच. आमीन सुमा आमीन. जाग जानी अंकल हमारे साथ साथ और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक पोएट्री हमेशा की तरह लेकर आते हैं और हमें सुनाते हैं. कॉल्स लेंगे 03000113488 के ऊपर. एंड नेक्स्ट कॉलर हेलो हेलो कोई है. कोई भी नहीं है.

0: क्या है?
1: एसएमएस भी भेजा है, चले एसएमएस भी भेज का ए, मैं बिल्कुल उसको रीड कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से हबीबुल्ला है ना आप?
0: नहीं नहीं, गुल हसन सोलंग।
1: बताएं कि आपने टंग ट्विस्टर सुना है?
0: नहीं नहीं, अभी रेडियो खुला है।
1: अभी रेडियो सुना है, थोड़ा सा और सुने फिर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉलर लेंगे। हेलो। ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, वेरी बैड। एक और ट्राई करेंगे। हेलो। ओके जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल ड्रॉप हो रही है, सिग्नल्स का इशू है, क्या इशू है ये? एक और ट्राई करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है?
2: जी जी आ रही है बाजी।
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: बाजी वफ़ा,
1: कैसे भाई? ठीक ठाक, परफेक्ट है। टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?
2: शुक्रिया हमारा।
1: ओके, टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?
2: हाँ, टंग ट्विस्टर भी सुना है, पर बोलना नहीं आता है बाजी। क्या
1: बोलना नहीं आता? चले कुछ और कह दें।
2: हाँ, और ये कह रहा है तो प्रोग्राम अच्छा है, देखो शहरी बताई नहीं जानकारी है, बलोच था शहर की बता सकती है बेहतरीन शहरी साजी। बाकी जो भी प्रोग्राम तुम्हारा सुन रहा है तो वफा पी जतन करो सारी।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। 03000113488, इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग और टंग ट्विस्टर के दिखा रहे हैं। एंड नेक्स्ट कॉलर, हेलो। ओके जी, ये भी ड्रॉप हो चुकी है। ऐसा करते हैं कि एक गाने की तरफ मूव करते हैं। एंड गाने के साथ फिर हम चलेंगे आगे, ठीक है जी। एंड गाना मैं प्ले करूंगी, बहुत ब्यूटीफुल, सो उसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और उसी के साथ फिर हम आगे चलेंगे। एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड द सॉन्ग कॉल्ड अखलड़।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: जीए सखर FM 88
3: सखर की आवाज.
4: हिन मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद. हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर. जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल अप सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार. सोना यूरिया ग्रेनुलर
0: खपे त आर्श अपनायो. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा ऐं एवोकाडो अव्हां जी सेंसिटिव स्किन खे अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 3 ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स, एक्ने ऐं स्कार्स घटाए स्किन खे बणाए रेडियंट स्पार्कलिंग ऐं ॿिए शानदार मिरेकल ग्लो. कुदरती चमक ऐं निखार जो बहितरीन इंतखाब. आर्श अप आगास इंटरवेट लिमिटेड.
5: असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
6: तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी.
7: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
6: सखर शिकारपुर रोड ते,
7: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
6: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
7: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो.
6: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
7: रिहाइशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा.
8: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
9: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
8: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: Aki call ji kono kahan se hello
1: assalam alaikum
0: hello
1: assalam alaikum ma'am
0: wa alaikum assalam sagar bhai
1: ji ji main sagar
0: dobara call lagi hai chale aap tongue twister keh ke dikha de aap
1: tongue twister
0: keh ke laga ke
1: kya tongue twister kya hai
0: tongue twister ye hai ke कड़क कड़क कौवा कच्चे कुएं के किनारे काए काए करता रहा
1: कड़क कड़क कौवा
0: यस
1: कड़क कड़क कौवा
0: कच्चे कुएं के किनारे
1: कच्चे कुएं के
0: यस
1: अच्छा
0: काए काए करता रहा ये कहना है समझ गए
1: समझ दो क्या मैं
0: ओके अब कहते हैं जरा
1: कड़क कड़क कौवा कच्चे किनारे काए काए करता रे कड़क कड़क कौवा काए काए करता
0: ओके वेरी नाइस वेरी नाइस नॉट बैड
1: मैं अल्फाज भूल गया
0: चलिए कोई बात नहीं क्या बात है बहुत अच्छा कहा जी और कुछ कहना है
1: जी मैम दूसरा शो आपने क्यों कैंसिल कर दिया
0: दूसरा शो मैंने क्यों कैंसिल कर दिया मैंने नहीं किया असल में स्पॉन्सरशिप की कुछ

0: कि या क्या कहते हैं यार उसे, देखिए मैं भी भूल
1: गया, भी जन्म में
0: मतलब ऐसे समझे कि बस वो खत्म हो गया।
1: अच्छा
0: हाँ जी, वो खत्म हो गया और इंशाल्लाह कभी फिर दोबारा अगर कोई शो हुआ तो तब आप सुन पाएंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
1: ठीक रहेंगे तो नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मैं खैरपुर हूँ, खैरपुर में शो चलता नहीं।
0: ठीक है ठीक है, अभी पकड़ के थोड़ी सुनाएंगे आपको, अभी आप गाना सुने। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। और गाना मैं प्ले कर रही थी लेकिन गाना प्ले करते साथ ही मुझे नजर आ गया कि ये जो मैशअप है ना, ये बॉलीवुड मिक्स मैशअप है, तो हम इस मैशअप को चेंज करेंगे एंड हम प्ले करेंगे एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे एंड उस गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने।

0: के हो तो आवाज भी सिर्फी है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो
2: अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे आर्ट्स क्रीम हेयर कलर पंजे पसंदीदा रंग सा पंजो अंदाज बनायो वधिक दिलकश वधिक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या की खास मौके की तैयारी हर लम्हे पंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट्स क्रीम हेयर कलर सा पंजी शख्सियत में नओ अंदाज नई ताजगी अजे पंजे वेझे स्टोर ता आर्ट्स क्रीम हेयर कलर हासिल करियो पंजी खूबसूरती के दियो नओ रंग आर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
1: रंग रौनकू ज़रख़ेज़ी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याप वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रीन टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटा सां ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोनलर मिटीअ जो मान वधाए
3: छा तव्हां जो ख़्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, पंज सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD ॿिनि सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW, CNA ख़ासि सहूलियतूं स्कॉलरशिप मौजूद ॿिनि सालनि जे कोर्सेस में फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज मुकमल लाइब्रेरी तजुर्बेकार फैकल्टी हॉस्टल पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत ही इदारो सिंध हुकुमशुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ़्ता आहे यादि रखो सीट्स महदूद आहिनि तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस OT हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 ऐं 03108166111 44 सालनि जो तजुर्बो हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज जोड़नि जो सूर मैदे में जलन गैस बदहज़मी तेज़ाबियत गुर्दनि जी पथरी बवासीर बे औलादी वारनि जो किरण ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसिर इलाज फराहम करे रहिया आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर नए पिंडवारी पुल के सामू PSO एंड शेल पेट्रोल पंप पंजी वगे ताई अप्लाई हियर ही राब्तो करियो
0: पहुंचाना यूनिवर्सिटी पटनिया क्लिनिक बिजनेस के पीस पब्लिक अनाउंसमेंट सेमिनार्स स्पेशल ऑफर्स स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड रूटीन GFM अपन को दीजिए ज्यादा रीच बेहतर इम्पैक्ट और मौसम नतीजे एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03 9319

0: बहुत ज्यादा लिमिटेड वक्त का मुकाबला बहुत सा। लास्ट एंड लकी कॉलर लेंगे और आज का कंटेस्टेंट किसने अच्छा बोला है वो भी बताऊंगी साथ में, लेकिन लास्ट एंड लकी कॉलर हेलो
1: कड़क कड़क कवा कुएं के किनारे काएं काएं करता रहा, कड़क कड़क कवा कुएं के किनारे काएं काएं करता रहा, कड़क कड़क कवा कुएं के किनारे काएं काएं करता रहा, कड़क कड़क कवा कोरे किनारे काएं काएं करता रहा, कड़क कड़क कवा कुएं के किनारे काएं काएं करता रहा, कड़क कड़क कवा कुएं के किनारे काएं काएं करता रहा।
0: ओके वेरी नाइस, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
1: फकीर SRH रोड़ी।
0: SRH रोड़ी, आखिरकार आपकी कॉल लग गई।
1: हाँ लग गई, आपने अटेंड की तो लग गई, वरना आप अटेंड नहीं करते।
0: मैं अटेंड नहीं करती, बस क्या करें, सबको यही शिकायत है मुझसे कि मैं अटेंड नहीं करती, जबकि मैं सबकी कॉल उठाती हूँ। ये अलग बात है कि फिर बहुत सारे लोगों की नहीं लगती या नहीं उठ पाती। अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट चले की कॉलर है आप, आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज की अच्छी बात ये है कि दूसरे को अकीर समझने से बेहतर है कि अपने आप को अकीर समझे अपने रब के सामने।
0: अरे वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है जी, वेरी नाइस। और कुछ कहेंगे?
1: बस इतना ही कहना।
0: ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आज के तंग टेस्टर जाते जाते SRH ने कह दिया, और इससे पहले सागर भाई ने बहुत अच्छा टंग टेस्टर बोला था, तो ये आज के सेगमेंट बोलो तो माने सेगमेंट के विनर हैं दोनों, सागर एंड SRH। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान, लव यू।

0: अपना शहर अपना मटियारी और मटियारी की आवाज
1: 91.6
2: PM हर अच्छे स्टोर से नाम ले
3: नेटवर्क
4: सोना यूरिया
5: फौजी क़यादत के आम नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो कुवैती परडे॒ही वज़ीर सां राब्तो बिन तरफ़नि लाॻापन गिज़ा समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं बिन्ही अॻवाड़नि पारां खिते जी सूरतहाल ते राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़ परडे॒ही तर्जुमान मूजिब इसहाक़ डार कांगो जे सदर सां बि फोन ते राब्तो बिन तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हि ॿोल कई इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में जजिस जी मुकररी वारी समरी मंजूर न थियण खिलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदर वज़ीर आज़म जी सेक्रेटरी ऐं कानून वारी वज़ारत खे नोटिस जारी करे छॾिया सुभाणे जवाब ॾियण जी हिदायत

ते दहशतगर्द मारिजी विया हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ कयो वियो। वल दहशतगर्द फुर कतल अगवा ऐं ॿियनि लोहनि में मुलविस हुया। कश्मीर चूंडनि जे टे मरहले में पोलिंग जारी। फौज डिवीज़न जे बिलिंग जे हिक तक कयूं आहिनि। आर मैदान में लथर पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में मुकाबला।

वर्सा इंडस हाईवे ते गुल मोहम्मद वहा वटा हथाए लाश की सुणप थी वही। पुलिस मूजिब लाश की सुणप रब रखियो मारफाणी के नाले से थी है। मारजी वेल रब रखियो मारफाणी कंबर शादातकोट जिले जो बदलवी का मथे केस दाखिल अथस। अखर में डबल सालोनी में छित जा चापड़ किरी पर जख्मी छित जबून हुजण करे सते क्लास जा चापड़ किरिया। हमादुल्ला समय जो सवेद टे शागिर्द जख्मी थे। जख्म किरण सबब टे

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान दे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई
3: जो मान वधाए
6: हीट स्ट्रोक या लू लगण जी सूरत में मुतासिर शख्स के गर्मी खा परे के महफूज ए थदी जगह ते मुंतकिल करियो मुतासिर शख्स जे जिस्म ते बर्फ या थदे पानी जो पट्टी रखो पानी या निमकोल पियारियो ही पैगाम PDMA सिंध जिले इंतजामिया दादू स्टार्ट नेटवर्क हेंड्स ए RDF पारा पेश कयो वयो आहे
0: It's 1:30 p.m.

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब दंदड़ा तमाम खूबसूरत मासूमी सुने समात उनके मुठी तरफा अस्सलाम वालेकुम। बुरकुलो दुआओं के संबंध है जादू की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नी से जगता जमी से आसमां तक जिंदगी से मौत तक सांस से तार तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के सामने सलामत रखे सो आमीन या रब्बल। आप सुन रहे हैं जी फिर तो यहाँ पर हमारे साथ माजखेर मोरो मीरपुर खास मटरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सर प्रोग्राम व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो सके कि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी इस। तो बिल्कुल जनाब यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप जरा रेडी शेडी हो जाइए और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो तमाम तो लोगों को वेलकम करने के साथ साथ ये भी बताते चले जनाब कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है ना। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के। सुनिए आपका गुड आफ्टरनून साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने ही सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर काम करती भाई आपकी सिद्ध आपके होंठों पर 440 सबके समान लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम करते हैं और आगे से प्रोग्राम करने के बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: होता है। और इसी के हिसाब से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1। और जी उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज के ऊपर आइए और वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा मैं ना देखती हूँ आप लोग कॉमेंट करते जाते लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो भाई लाइक के कोई पैसे वैसे लगते हैं क्या? भला लाइक नहीं करते हैं आप पोस्ट लाइक भी किया करें, दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो पोस्ट को लाइक किया करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी के साथ साथ बताएं आप कहां कहां से हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बताएं टॉपिक आज के प्रोग्राम का कि घर में सबसे ज्यादा ड्रामा आपका जो है ना वो किस बात पर होता है। और इसी के साथ साथ यहां पर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते जाएंगे। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो खास बातें हैं वो बहुत ज्यादा खास है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रख पाए, और खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा एक जरूरी सा काम बन जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको इन तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में पता है तो आप मुझे ये जरूर बताया करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं तो आपके एरिया में मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि आप लोगों के एरिया में मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि आपके लिए भी आसानी होगी, आपके आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए भी आसानी होगी। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाजमी से आप ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे बहुत ज्यादा बातें जो बताने वाली हैं। और यहाँ पर हमारे साथ सादिया अली मौजूद है प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून कहते हैं। हैव अ नाइस डे, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा, से जो की आए हो, खुश आयो? हाँ जी माँ सफा, खुश दाम बतायो। तो वह गाने जी फरमाइश कही मगानो हलान जी कोशिश करना। और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, वासा भाई वालेकुम अस्सलाम वाली सलामत, वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को। मूसा कोरी हमारे साथ मौजूद है, सलामती वालेकुम असलम अदा छाला खुश आयो। और उन खां अलावा वासु भाई कहते अदी असा तवा खां अग में मौजूद वेठा आयूं पोस्ट ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून माई स्वीट बुआ जी एंड वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है मोहम्मद जमान भाई। और हमारे सारे सादिया कहते आप ये पोइट्री है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह गए हम, लोग समझते रहे कि हमें कोई गम नहीं, वाह साई वाह। अच्छा प्यारी मोमना हमारे साथ कहते हैं हेलो स्वीटी, हेलो टू यू प्यारी मोमना। अच्छा उन्होंने कहा अलावा मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। अखलाक भाई हमारे साथ कहते हैं नाइस शो, नाइस व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ओ ये बाबा मनो तानी। अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी हमारे साथ हैं, जेकब अब्बास से आपको भी वेलकम कहा जाता है। उन्होंने कहा अलावा किशोर भाई कहते हैं सलाम अद्दा की आयो, तबियत कैसिया? चले बहुत अच्छी बात है ये तो, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाली सुल्तान हमारे साथ मौजूद है जी, हेलो वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, कैसी है? ठीक ठाक है। और उनका अलावा कहती हैं वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है हमारी प्यारी हाली सुल्तान। चाचा कहते हैं सच बताऊं आपके टॉपिक का आंसर या झूठ, सच्ची बोले भाई, झूठ क्यों बोलना है आपने? और उनका अलावा गो टू मोहम्मद तैयब थेबू का हाबी बोला थेबू भाई, सॉन्ग गुदराए जो तेरा मेरा है प्यार अमर हाजिर हाजिर। अच्छा ना साईं बस गाने जी फरमाइश कंदा, न दुआ न सलाम। चौथा अच्छा बो मैसेज कयो थव तमान जो शो वेरी नाइस आहे, सलाम तमा के, वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच तमा से गड मौजूद आए। पोस्ट के वद का वद तमा के ना लाइक एंड शेयर करनो हुंदो आहे, शेयर करण सा फायदो यो मिलंदो आहे त बाबा असा खोड सारे मानन ताई पांजो आवाज पहुंचाए सगु था, उनन के बुधाए सगु था त मार्केट में केडा भला भला प्रोडक्ट्स तमा जे लाए अवेलेबल थी चुका है जी, हु बस वने नई नालो वठी करे तलब करे सगन। सो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहे ना आईडीज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहे जेके तमा इस्तेमाल करे पांजी खूबसूरती के सफा वधाए सगो था, आई पांजी खूबसूरती जो ख्याल रखी सगो था। सो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ट्राई करेंगे, क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम आ चुका है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाया जाए, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आप ही कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 p.m. This time check. It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कपड़ा डीलर या सोना बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
4: हाणे अवां जे पांजे शहर मोरो में छातीअ जी तकलीफ़, दम या साह ऐं छातीअ जी बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर काशिफ अली बबर MBBS FCPS पल्मोनोलॉजी माहिर अमराज़ फिफड़ ऐं छाती टीबी नमूनिया कोरोना दम एलर्जी फिफड़नि जो कैंसर सिगरेट नोशीअ खां निजात ऐं वज़न जे वधण मोटापे सबबि पैदा थींदड़ बेचैनीअ जो मुकमल इलाज हिते जदीद तरीन फिफड़नि जी स्पायरोमेट्री टेस्ट जी सहूलियत पिण मौजूद आहे. टाइम हराचर ते सुबुह जो 9 बजे खां मंझंदि 12 बजे ताईं. अपेंडिक्स, गुर्दे जी पथरी, बवासीर, हर्निया ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो माहिर ऐं मशहूर जनरल सर्जन डॉक्टर सलाम खान ज़रदारी MBBS FCPS असिस्टेंट प्रोफेसर ऐं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन. अपेंडिक्स, गुर्दे जी पथरी, बवासीर, हर्निया ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो ऑपरेशन जदीद तरीक़े सां कया वञनि था. टाइम हर आचर ते सुबुह 9 वॻे खां मंझंदि 1 वॻे ताईं. एड्रेस, दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स, बांदी रोड, मोरो. हाणे राब्तो करियो सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह, एडमिनिस्ट्रेटर, 0321-82-8494 ऐं 0304-037-6381.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, सिंध जो मशहूर अखियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन तुनियुम, साबका इंचार्ज अखियुनि जी अस्पताल LRBT गंबट, जदीद मशीन कंप्यूटर वसीले अखियुनि जो चेकअप लेजर फीको मशीन वसीले मोतिये पानी जो कामयाब ऑपरेशन कंदा आहिन। उन खां इलावा कारो पानी अखियुनि जे मुख्तलिफ़ बीमारियुनि जा ऑपरेशन पिण कया वञनि था। डॉक्टर साहब रोजाना सुबुह 9 खां मंझंदि जो 1 वॻे ताईं शुजा अखियुनि जी फलाई अस्पताल दर्स बाईपास चौक मोरो में मरीज जो चेकअप ऑपरेशन करना आही। वधीक मालूमात जे लाए 03013526807।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हरछंछर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नर्द अछी मस्जिद दर्स रोड मोरो। राब्ते लाइ फोन करियो 0301-3646-459। निजात बवासीर कोरस, सुकून एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: ॾींहं जे गरम तरीन वक़्तनि ते सुबुह 11 वॻे खां शाम 3 वॻे ताईं ॿाहिरि निकरण खां परहेज़ करियो। ज़ोर बार वारे कम खां पासो करियो। सख़्त गर्मीअ ऐं उस में पंहिंजो मथो ढके रखो। गर्मीअ जे दौरान छटी, टुवाल, पाणी ऐं लीमो पाणी पाण सां गॾु रखो। शदीद उस में ॿाहिरि रांद रूंद करण खां पासो करियो। ही पैगाम PDMA सिंध, ज़िले इंतज़ामिया दादू, स्टार्ट नेटवर्क, हेंड्स ऐं RDF पारां पेश कयो वियो आहे।
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर

0: या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो, छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर छंछरु ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नज़द अची मस्जिद दर्श रोड मोरो। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0301346459। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी।
1: टेंशन छोड़ो, सुनो GFM 88 मोरो की आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन बहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे साथ शेयर किया करें, क्योंकि कहते ना शेयरिंग इज केयरिंग होती है। इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है जरा वो भी बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आप मुझे बता रहे हैं आपके घर में सबसे ज्यादा ड्रामा जो है वो किस बात पर होता है। क्योंकि हमारे घरों में एक ऐसा इंसान जरूर होता है हमारे फैमिली में जो कि बहुत ड्रामेबाज होता है, और बात चाहे कोई हो ना हो लेकिन उसका ड्रामा तो भाई हर वक्त चलता ही रहता है। तो आप मुझे बताएं आपके घर में जो है वो सबसे ज्यादा ड्रामा किस बात पर होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 पर और फेसबुक पर। इसी के साथ साथ आप जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, फेसबुक पर हैं या पैनल पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। ओके जी, मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को यकीनन पसंद आने वाले हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद है, जैसे कि भाई व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज लवली क्रीम है, व्हाइट एज फेस वॉश है, व्हाइट एज सोप है, व्हाइट एज का डॉक्टर पिम्पल ट्यूब है, व्हाइट एज का लोशन आता है, व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन आते हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। ओके जी, तो आपके लिए मतलब कुल मिलाकर सारे ही तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं, और जो प्रोडक्ट आप परचेज करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों परचेज करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर देखा है मैंने बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, यानी कि ऐसा कह लें कि भाई उनको नॉलेज नहीं होती इस बारे में कि वो अगर मार्केट जाते हैं तो उनको बस दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है तो वो आराम से उसे परचेज करके आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स तैयार कैसे किए गए हैं। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल इसी तरह से जो है ना अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो क्या ऐसी खास बातें हैं जो आप लोगों को मिलने वाली हैं जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिक्र करते हैं जी व्हाइट एज लवली क्रीम का। और व्हाइट एज लवली क्रीम का जिक्र हम इसलिए करेंगे क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने इतनी जबरदस्त तरीके से इसे तैयार किया गया है, इतनी प्यार से इसे तैयार किया है कि हर इस्तेमाल करने वाला इंसान जो ना वो बिल्कुल यही बोलेगा कि भाई कितनी शिद्दत से आपने जो है ना इस प्रोडक्ट को तैयार किया है जो हमें इतना खूबसूरत सा निखार मिला है। और ये खूबसूरत सा निखार ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ आपके चेहरे पर निखार आएगा जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना है, आप घर में रहते हैं या फिर बाहर आकर कोई काम है, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज लाजमी किया करें। और व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज जो है ना ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। वो ऐसे क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम फेयरनेस क्रीम होने के साथ साथ जो है ना ये आप लोगों के लिए इसके अंदर जो है वो 30 विटामिंस के कैप्सूल्स भी एड किए गए हैं और उसके अलावा सनस्क्रीन भी एड की गई है। देख रहे हैं, ऐसा कभी भी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आप लोगों के लिए किसी फेयरनेस क्रीम के अंदर सनस्क्रीन ऐड की गई हो। लेकिन भाई साहब, व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन भी मिल रही है, यानी कि आपको खूबसूरती भी मिलेगी और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होगी। तो व्हाइट एज लवली क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर कोई व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करें और अपनी खूबसूरती में जरा व्हाइट एज लवली क्रीम का टचअप लाइए। और उसी के साथ साथ व्हाइट एज लवली क्रीम को ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी जरा बताते चले। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये फेयरनेस क्रीम है जिसे आप बस ऐसे लगाएंगे। अगर आप कहीं मेकअप करने वाले हैं, आपको नहीं पता कि भाई गर्मियों का सीजन है तो मेकअप कैसे लगाया जाएगा, मेकअप वैसे भी आपकी स्किन के ऊपर टिकता नहीं है गर्मियों के मौसम में, तो आपने अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद व्हाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार अपनी हथेली पर ले लेना है। उसके बाद आप ऐसे जो है ना मसल कर हथेली को ऐसे ऐसे दोनों हाथों से, उसके बाद क्या करेंगे कि अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप
देखेंगे कि भाई आपके चेहरे पर जो है ना निखार आ चुका होगा, ग्लो आ चुका होगा और आपके चेहरे पर ऐसा शिमरी इफेक्ट भी आ चुका होगा। तो चाहे आप मेकअप करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप खूबसूरत हो चुके हैं। तो जल्दी से व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और साथ में आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप का भी इंतखाब कर सकते हैं एंड व्हाइट एज का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स हैं, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के ये प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स है, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हाइट एज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी बात ही अलग होगी। और इसी के साथ साथ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब भी आपके लिए अवेलेबल है, और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब उन लोगों के लिए खास करके जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक्नी प्रॉब्लम से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप ऐसा किया करें कि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल किया करें। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भाई पर्सनली ये बहुत एक अच्छा ट्यूब है। मैं तो आपको ऐसा सोचूंगी कि भाई मैं तो चाहूंगी कि आप लाजमी से इस्तेमाल करके देखिएगा, खास करके वो लोग जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा है। एक्नी प्रॉब्लम अगर आपके चेहरे पर आ जाता है ना तो उसे ठीक करना, उसका एक्नी को खत्म करना ये बहुत हमें डिफिकल्ट सा टास्क लगता है, लेकिन ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एक्नी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आयुर्वेदिक फार्मूला है, मेडिकेटेड फार्मूला है, इसे आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगा सकता है और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप दो मरतबा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप सुबह को भी लगाइए और रात को भी लगाइए। एक्नी अगर बहुत ज्यादा एक्नी है, यानी कि बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा एक्नी हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्नी होने की वजह से आप ऐसा करेंगे कि आप तीन मरतबा इस्तेमाल करेंगे। और जनाब बात सिर्फ एक्नी तक महदूद नहीं रहती, अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं, कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई इस तरह के निशानात भी अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे या फिर दिन के टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करने के बाद अपना चेहरा अच्छे से सुखा लीजिए, हाथों को भी क्लीन रखें, उसके बाद जहां जहां पर निशान है, कट है, एक्नी है, चोट का निशान है, वहां वहां पर आपने डॉट डॉट की सूरत लगाना है। आपने पूरे फेस पर नहीं लगाना, क्योंकि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये पूरे फेस पर लगाने के लिए नहीं है। अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को किसी अपनी नाइट क्रीम के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो मिकदार है ना, आधा ट्यूब या फिर आधे से थोड़ा कम आप अपनी नाइट क्रीम के अंदर ऐड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों को ये एक आदत होती है कि भाई वो फार्मूले लगाएं, फार्मूलों का ये क्रेज उनके ऊपर आ जाता है। तो आप डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब है ना, ये अपनी नाइट क्रीम अंदर ऐड कर सकते हैं, और व्हाइट एज की लवली क्रीम भी अपनी नाइट क्रीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपका जो है ना वो फार्मूला बन के तैयार हो चुका होगा। अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते तब तो ये भाई बहुत ही अच्छी बात बन जाएगी। तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से भी अच्छे वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं। यकीन नहीं आता तो आप ट्राई करके देखिएगा, फिर आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ जी सिद्रा बाजी बिल्कुल सही कह रही थी। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो नंबर क्या होने वाला है वो भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए गाना लगाया है तो हम जरा गाना सुन लेते हैं। और साथ ही साथ आपके मैसेजेस भी मुझे मिलते जा रहे हैं, तो आपके मैसेजेस की जाने भी आएंगे, कौन कौन हमारे साथ हैं देखते हैं, और साथ ही साथ पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें।

हा बाबा बिल्कुल तव्हांजी दिलड़ी उॾी वेंदी जॾहिं तव्हां वाइटिश जा प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा। वाइटिश जे प्रोडक्ट इस्तेमालु करण जा सभ खां बहितरीन फ़ाइदा इहे आहिनि, तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका तव्हांखे नेचुरली महसूस थींदी। ईअं न त कुझु माण्हू अगरि कोई बि प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा त हुननि खे हथरादु लॻंदो आहे न, त भाभी हीअ जेके आहिनि मतिलब क्रीम लॻाए करे गोरा थिया आहिनि या हुननि जे चेहरे ते ख़ासि नज़र ईंदो आहे। पर जॾहिं तव्हां वाइटिश जा ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा त तव्हांजे चेहरे ते नेचुरली जेको आहे न ख़ूबसूरती तव्हांखे नज़र अचणु स्टार्ट थी वेंदी। अगरि तव्हां बि नेचुरली स्टार्ट करणु चाहियो त पंहिंजी ख़ूबसूरती खे, त तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसो। हुन खां अलावा चाचा कहते शिमरी इफ़ेक्ट बोले तो आपको मैं बता चुकी हूँ। वैसे आप एक काम कीजिए, गूगल पर आप शिमरी इफेक्ट लिखकर आप इमेजेस की जानिब जाइए तो आपको पता चल जाएगा शिमरी का मतलब क्या होता है। उनके अलावा ये हमारे

भैया तो फुल दादागिरी थी भाई ये नकरण गुर्जी। और यहाँ पर अखलाक भाई कहते आंसर टीवी रिमोट पर, भाई जान क्या बात है। और साध्या कहती है रिक्वेस्ट है मेरी, बिल्कुल आपका गाना लगाते हैं जी। और किशोर भाई कहते तबियत आ एड़े डॉक्टर के दिखा तो जिनके डिसी तबियत सही थी। कहते तमाम डी स्किन ब्यूरो क्रीम वाली डॉक्टर के तो नथा दिखा रही पार्टी तबियत। वो क्या है ना कि मुझे शक हो रहा है। निदड़ी आ चुकी है हमारे प्रोग्राम में, कहती अस्सलाम वालेकुम इन मौला अलैहिस्सलाम मदद। ओके जी वालेकुम अस्सलाम, सॉरी आज लेट हो गई, तबीयत ठीक नहीं इसीलिए मोबाइल रख दिया था, टाइम देखा तो आ गई मैं बस। अरे बाबा वरी अजय तमाम जी तबीयत भी खराब थी। वासु भाई कहते दी सिडो शाम वाले प्रोग्राम में गडायूं मोबाइल जी चार्जिंग खत्म पड़ी थी। चलो जी पानी मोबाइल के चार्ज कर बैठो। और प्यारी मोमना कहती है टॉपिक जब किसकी शादी होती है तो ड्रेस नहीं मिलता तो बस कहते हैं हम शादी पर जाएंगे ही नहीं, ड्रामेबाज लोग। ये जो सीन बनता है ना ये बहुत कमाल का सीन बनता है, और इसके ऊपर वाकई घर में एक अजीब सा ड्रामा बन जाता है। या बिल्कुल सही कह रही है निदड़ी, कहती है ये टॉपिक मेरा ड्रामा ज्यादातर चाय पर होता है, मुझे हर हाल में चाय चाहिए होती है, अगर मेरी चाय खत्म हो जाती है फिर सारा घर सर पे उठा लेती हूँ। भाई आप तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज हैं, तो बस अल्लाह बचाए आज।

हाँ बाबा लगे ये तो ट्रे में सजाए आई दिलड़ी पो अगले हमरा खड़ी वर्ती दर्द दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जाने बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताया कैसी है मेरी प्यारी स्वीटी। अच्छा अली मुर्तजा आ चुके हैं, सलाम गुड आफ्टरनून वालेकुम अस्सलाम। और दिल कहती है हाय सुकून चंदा की आवाज सुनकर अल्लाह मार। अली मुर्तजा कहते हैं हिरा सनोबर रिमशा उरूसा फरहान बेनजीर आरफा भी सुन रही हैं, सबकी तरफ से सलाम वालेकुम अस्सलाम।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, ये आप ही लोगों का काम होता है, तो आप ही ने करना होगा ना, कीजिए। और साथ ही साथ मुझे बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइटिश का।

ay Lee, दिलड़ी हुई छावी बादामी अखड़े वारो बणी वियुसि समझो था पर भूरे रंग वारो भी बणी वेंदुसि जॾहिं

अच्छा भाई सैया शेर तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में नोट कयूं नी समझो था सोन जे लाइ बसि माफ़ कंदा कयो मूंखे वो आप ऐसा बुला करे सह लेंगे थोड़ा सा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ जरा ऐसा कीजिए आप मेरा दिल कर रहा है कि एक एक कमेंट लिखिए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम जरा कमेंट में लिखिए। अच्छा नदरी कहती है कि अल्लाह अब नहीं बचा सकता तुम्हें अल्लाह भी नहीं बचा सकते ना।

टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक, हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, वापसी जल्दी मोड़ी तव्हांजी चवंदा तव्हां करीने मुंहिंजो हिते वेठा हुजो मां ओही वञी ओही मोटा थी सो सेट यूनिट कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कयो सोणा थियो बाबा ॻाल्हि किसम चंदा कयो

0: GAFM 88 Network सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News।
2: Brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
4: चार्ज कर दाम इंसाब बोल निशानी मुहम्मद।
5: सऊदी अरब ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो ईरान जे ख़िलाफ़ नाहे। पाकिस्तान ऐं तुर्किया सां ईरान जा गहरा ऐं तारीख़ी लाॻापा आहिनि। परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं मोहम्मद

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

में तो बेतक हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो प्रोग्राम है वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ प्रोग्राम में। और साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन को भी दूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप जान चुके हैं कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इसी के साथ साथ वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप कौन को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। डी स्किन में ये सिर्फ आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं। तो डी स्किन क्रीम आप परचेज करेंगे या फिर डी स्किन का फेस वॉश आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कई मतलब ऐसा वाला सीन बन जाता है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि भाई हम अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन मजीद खराब हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोग लाजमी लगाइए, क्योंकि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और उसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। क्या ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट और क्या ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा, उसके बाद आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, और इसकी क्या खास बातें हैं वो भी बताएंगे। लेकिन बहुत से लोग बेचारे ये सोचते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर तो मिलते नहीं है, तो हम कहां से परचेज करें, या जैसे अभी कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई हम फलां जगह पे रहते हैं, क्या वहां पर अवेलेबल है या नहीं, आप बता दें ताकि हम जाएं तो बस हमें मिल जाए। तो अगर आप जाते ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर वहां पर आपको नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट, तो आपने थोड़ी सी जो है ना वो कोशिश करनी होती है, और कोशिश ये करनी है कि आपको नंबर बताती हूँ प्रोग्राम के अंदर, वो नंबर आप डायल किया करें। नंबर के ऊपर आप या एक कॉल किया करें या फिर आप एक मैसेज किया करें। लास्ट टाइम किसी लड़की ने बोला था कि हम नहीं कर सकते कॉल, तो आपके घर में कोई मर्द हजरात हैं तो उनसे कॉल करवाइए, उनसे मैसेज करवाइए, उनको बोलिए भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप बस जाएं और परचेज करके आ जाएं। तो नंबर से ही जरा नोट कीजिएगा। ओके जनाब, नंबर है पहला 03-12-50-25-907, और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09। ये दोनों नंबर से जो कि आप डायल कर सकते हैं, एक बंद होगा एक नहीं रिसीव करेगा, तो आप दूसरे नंबर के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। वैसे ऐसा किया करें कि आप उन्हें तंग मत किया करें, आप बस कॉल किया करें, अगर कॉल नहीं करते तो आप छोटा सा मैसेज छोड़ दिया करें कि भाई फला फला जगह पर आपके वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये अवेलेबल नहीं हुए।

आप से ड्री स्किन ब्यूटी क्रीम एंड ड्री स्किन फेस वॉश के बारे में भी थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताते चलें। तो ड्री स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता ड्री स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, उनको थोड़ा सा बताते हैं। तो जनाब, ड्री स्किन ब्यूटी क्रीम जेको तव्हां जी स्किन जे मुताबिक तैयार थियल आहे। सेंसिटिव स्किन अगर तव्हां जी आहे, यानी कि सेंसिटिव स्किन उहा स्किन हूंदी आहे जेती अगर तव्हां कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा त तव्हां जी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे, तव्हां जे चेहरे ते एकनी अची वेंदा आहिनि या फिर तव्हां

स्किन जेका काफ़ी ज़्यादा रेड थी वेंदी आहे ऐं हिन सूरत हाल में अगरि तव्हां इहो सोचो न त बाबा हाणे असां कोई बि प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदासीं असांजी स्किन मज़ीद ख़राब थी वेंदी सो तव्हां इन सूरत हाल में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको मेडिकेटेड फार्मूलो आहे हिन खे डॉक्टर्स तयारु कयो आहे त सफ़ा हीअं परफेक्ट प्रोडक्ट आहे तव्हां सभिनी जे लाइ ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके सेंसिटिव स्किन जी वजह सां परेशान आहिनि ऐं तव्हां इहो सोचींदव न मां सेंसिटिव स्किन खे इन लाइ हाईलाइट कंदी आहियां छो त भई कुझु माण्हुनि जी स्किन सेंसिटिव हुजण जे बावजूदु हुननि खे ख़बर हूंदी आहे त बाबा असांजी स्किन सेंसिटिव आहे या फिर उहे सोचींदा आहिनि त बाबा प्रोडक्ट अहिड़ा मार्केट में अचनि था जेके असां लॻायूं था त असांजी स्किन ख़राब थी वञे थी त इहो इन जो मतिलबु इहो आहे त प्रोडक्ट में कोई इशू न आहे तव्हांजी स्किन सेंसिटिव आहे ऐं इन सूरत हाल में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणो पवंदो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बिल्कुलु लॻाए सघो था हिन में को बि जेको आहे न केमिकल एड न आहे का बि चीज़ एड न आहे जेका तव्हांजी स्किन खे ख़राब करे सघे थी उल्टो तव्हांजी स्किन ठीक थी वेंदी ऐं वरी माण्हू सोचींदा त ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका सिर्फ़ सेंसिटिव स्किन वारनि जे लाइ त ईअं बि न आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे तव्हां हर कोई इस्तेमालु करे सघो था तव्हांजी स्किन सेंसिटिव आहे ऑयली आहे ड्राई आहे नॉर्मल आहे कॉम्बिनेशन टाइप आहे हर तरह जी स्किन ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बनाने की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को बनाया इस तरह गया है कि इसके अंदर जो है ना आप लोगों को विटामिन ए बीड्स मिलता है माइक्रो बीड्स

फार्मोलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो ना आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। और यकीन जानिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि

तव्हां खे फीलिंग ईंदी बाबा त तव्हां कोई अमीराणो प्रोडक्ट लॻायो था, सो अगरि तव्हां बि मुना सिर्फ क़ीमतुनि में कोई सुठो प्रोडक्ट इस्तेमाल करण चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढो बेस्ट ऑप्शन आहे तव्हां वटि। तव्हां बसि वञो पंहिंजी क़रीबी जनरल स्टोर ते, नालो वठी कयो ऐं परचेज करे अचो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां नाइट क्रीम आहे राजे टाइम इस्तेमाल करे सघो था। मर्द मायूं सभी लॻाईंदा बाबा, पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो।

जी आप सुन रहे हैं YTH इंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरतियां हासिल कीजिए। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं आपके घर में सबसे ज्यादा ड्रामा किस बात पर होता है। उसी के साथ साथ आप अगर हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है तो पोस्ट को काइंडली लाइक और शेयर करती रहिए। अच्छा तमाम पाण ऑलरेडी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का फेन आयो।

अच्छा बॉडी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा त तव्हांखे ॾाढो भलो रिज़ल्ट मिलंदो। बॉडी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे, जेको ॿुधाए त कहिड़ा फ़ाइदा अथसि, पर तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि उहे

जी क्या बात है, यहाँ पर हमारे साथ ही मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वाइटेज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। अब्बास महर हमारे साथ हैं, अब्बास महर भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है। और ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम अदीद, छा हाल आहिन, अली साहब की गोठ, गुलाम मोहम्मद साहब की कहा अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, असा के कलाम बुधरायो मुमताज मोलाई जो, बिल्कुल भा तवाज ला मुमताज मोलाई हलायूं था। उनके अलावा मकसूद मना हमारे साथ है, हेलो जी, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, गाना सुनाते हैं आपको। सॉन्ग है ना, रस्ते का आईंदा वेंदा होटल आई भी दादी सुट

ओके जी मकसूद भला कहते हैं कि हाणी बस मां शरबत तो खपाया तमा शरबत खपाए था छो भला खैर ताई चलो भले शरबत खपाया बाबा रोजी करो प्यूरी क्रीम जो इस्तेमाल आमिर खिकम शोर अली अकबर महदुल्ला महेश रसमी मैंने शुरू करते हैं और शाह

हाँ तो भैया उन्हें खाए अलावा ये इसीलिए मेरी अम्मी मेरी चाय जो है पहले से निकाल कर रख देती है, नींद से उठ के पहले मुझे ही देती है। वाह सही वाह ले आ बाबा नदड़िया जी। उन्हें खाए अलावा दर्दी दिल कहती है टॉपिक चंदा, जब अपनी पसंद की ड्रेस ना मिले तब घर में ड्रामा होता है। लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ कपड़े होते हैं मुझे ये लगता है कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बस। और भाई चाहते क्या है हम लड़कियां, कुछ भी तो नहीं बस बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जूते और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: सिर्फ 60,000 रुपए।
1: सूरतीअ जो असल राज डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के धंधा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55
1: जो आवाज
3: नेशनल पाकिस्तान।

अब बात दोबारा से आप लोगों के पास एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स से तावन से आपकी सिद्धर आपके साथ मौजूद और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। तो जिन लोगों ने या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद तो और चाहतों का बेहद वाला बहुत सा गाना सुन रहे हो और साथ ही साथ ब्यूटीफुल बन तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपने करना होगा। हाँ जी कहते ना खूबसूरती हासिल करना ऐसे तो नहीं बस चुटकी बजाएंगे खूबसूरती हासिल हो जाएगी। अगर हासिल करना चाहते तो कुछ करना तो पड़ेगा। उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जो भी आपको लगे कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये मतलब कोई फेयरनेस क्रीम लगाता है, कोई नाइट क्रीम लगाता है, कोई साबुन लगाता है, कोई फेस वॉश लगाता है, कोई ट्यूब लगाता है एकनी वाला, तो हर तरह के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो बस आप अपने हिस्सा वाला प्रोडक्ट परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और आपको मिल जाएगी खूबसूरती।

बिल्कुल जनाब, ये दिल आपका हुआ। लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहेंगे तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा 0332738 0927309। और ये नंबर अगर मसरूफ हो ना किया जो है 0350252077 0312502507।

0: सोचा था
1: ओके जी, क्या बात है। तुम मिले जब से तो महसूस तब से होना स्टार्ट हो गया है कि आपको खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बताया, लेकिन डी स्किन फेस वॉश के बारे में अभी रहता है तो आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश के बारे में भी बताते हैं। तो बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं हम क्रीमें नहीं लगाते हैं, तो भाई आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है। और डी स्किन का फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी का सोप है और कितनी अच्छी क्वालिटी से इसे तैयार किया गया है। जनाब, डी स्किन का जो फेस वॉश है ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि एक्टिव रखता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है और आपकी स्किन को जो है ना वो मॉइस्चराइज भी रखता है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए, सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप वाले लोग लगाएंगे। और डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल कीजिए जनाब, सुबह को लगाएं, दोपहर, रात जब आप

कि अगर आप ऐसा देखें ना कि कुछ क्रीमें होती हैं जो कि भाई नाइट क्रीमें होती हैं तो उन्हें आप रात के टाइम ऐसा फेस वॉश देता हाँ का पाबंदी का वहाँ दिल चवे ते मतलब तो वहाँ नहीं सको था।

अच्छा दर्दे दिल कहती है कि चंदा मेरे घर में ड्रामेबाज है सबसे बड़ी अलीजा, फिर भाई मैं ड्रामे नहीं करती, आप वैसे मासूम लगते हैं। उनका अलावा अख्तियार अली सिंधी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कैसी आप, मैं ठीक हूँ, आपको वेलकम कहा जाता है और आप सर रिजवान साहब को सलाम दे रहे हैं। उनका अलावा रशीद खोसो हमारे साथ कहते हैं मैं हैदराबाद से आपका शो सुन रहा हूँ और आप हमारे साथ हैं जी रशीद खोसो, कहते हैं आपका शो बहुत आला है, थैंक यू सो मच। इसको समझने के लिए जमाने लगे। ओके जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और रशीद भाई आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप क्रीमें नहीं लगाते तो डी स्किन का फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं।

0: किशोर भाई थे अगर केर वडो करे त समझो हो झगड़ालू आ या गाल वे तो वल अरे चाचा कहते कटे सटे सादिया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और निधिड़ी कहती हैं कि नहीं तो मैं इस सब से दूर हूँ मुझसे ज्यादा
1: को बांधा
0: मुझे ज्यादा शौक नहीं ड्रेसिंग या मेकअप इन सबसे बनती नहीं मेरी मैं सीधी सी लड़की हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हम मानते हैं हम एग्री कर चुके हैं क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा और रशीद भाई कहते हैं हमें तो इंतजार करवाती है हमारा मैसेज नहीं शामिल करती है भाई टाइम से सबके मैसेजेस शामिल होते हैं सब रखा करें। बख्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं और बख्तली भाई को वेलकम कहा जाता है।

ओके जी, मुक गया गाना। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि हदीका जी की आवाज में होने वाला है। चाचा ने फरमाइश कर दी इस गाने की, तो हम एंजॉय करेंगे। और हैप्पी कहती है, आज जब घर वाले मेरी कोई बात नहीं मानते ना, तो फिर ड्रामे करती हूँ घर में। अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। और न का अलावा ज्यादा कहते हैं कि लड़कियों से अगर कुछ पूछ लो तो मर जाएंगी, बताएंगी नहीं, अगर नहीं पूछो तो हमें मार देगी। सफा सही ताचो अल्लाह, सफा सही ताचो। अगर कुछ पूछा जाए तो हम कहते हैं भाई बताते नहीं, आराम से नहीं बताते इजीली, मतलब कुछ टाइम लेकर फिर बताते, लेकिन अगर नहीं पूछा जाए तो फिर हम अगले जी सकलेन अली अबड़ो दे। हेलो हेलो रमजान अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। और आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा। रमजान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें आप भी। ओके जी अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है। अखलाक भाई आपकी तो ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं, बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, ठीक है। और जी हमारे साथ हैं गोट मोमन तैयब थे, वो कहा हबीबुल्ला थे वो भाई लाड़ी, बहुत अच्छा भी मुझे सॉन्ग सुनाए ममताज मलाइका कोई भी। अच्छा ताहिरा, मैं आपके लिए ममताज मलाइका गाना जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में

के साथ साथ फजीला कहती स्वीटी आई एम बिजी बट आपका शो सुन रही हूँ, टॉपिक साइलेंट रीड करना। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा।

मुझे ढोलन का इंतजार है ताकि ढोलन आए तो हम उसको भी बता सके कि ढोलन आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ ढोलन को डी स्किन फेस वॉश की भी जरूरत है, तो दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए ताकि आप खूबसूरती में जो है ना वो थोड़ा आगे रहे। और इसी के साथ साथ खूबसूरती के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता भाईजान, तो लाजमी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते रहिएगा। और नखा अलावा अच्छा अखलाक भाई कहते हैं बस ये सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और किशोर भाई कहते हैं बुरा बनने के बाद सही था जो और कहते हैं कि मेरे ख्याल में दिल एक बार है आपका हो गया था, अब रोज रोज दिल आपका कैसे हो जाता है। यो तो तवा बुधायो न रोज रोज दिल की अचे तो इकड़े माणू ते सूबी वो आई ना वो जी का गाल एक ही तो दिल है मेरे पास कितनी बार लूटोगे। निदड़ी कहती तोबा ॾिसो बाबा इहो सभु कमाल अथव डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो। रमज़ान भाउ तव्हांजो मोहबत वाइन प्रोग्राम पसंदि अची पियो तव्हांखे, कोन कयो आहे बड़े दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जी। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो जी, अञा ज़िंदगी में अॻिते वधंदा रहो। खूबसूरती आहे त सभु कुझु आहे। खूबसूरती अॼुकल्ह हर कंहिंखे जेको आहे न ॾाढो मुतासिर करे रही आहे। तव्हां इन चीज़ जो ख़्यालु रखियो हूंदो। असां हिकड़ी ॻाल्हि ॿी बि हूंदी आहे, मां इन चीज़ खे हमेशह जेको आहे न थोरो क्लियर कंदी आहियां, त खूबसूरती जो मतिलबु सिर्फ़ अछो रंग न आहे हूंदो, माण्हू हूंदो आहे त तव्हांजी दाग हुजे न हुजे ऐं वरी तव्हांजी स्किन वाइट बि हुजे त पोइ मज़ो अचे। मसला जेके आहिनि ख़तमु करण लाइ, पंहिंजे चहिरे खे क्लियर करण लाइ पंहिंजे चहिरे जी क्रीम जो इस्तेमालु बि मिली रहियो आहे। तमामु सुठा प्रोडक्ट आहिनि, डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयार थियल आहिनि मेडिकेटेड फार्मूले सां। सो को बि टेंशन आहे त बाबा तव्हां इस्तेमालु कंदा त को नुक़सान पहुची सघे थो। सो आप इस्तेमालु कीजिए और ख़ूबसूरत हो जाइए।

0: 나가봐. اسلام سمیت بین اسلام آباد ہائی کورٹ صدر وزیر اعظم جے سیکرٹری ہیں قانون واری وزارت کے نوٹس جاری کرے چھڑیا سبحانے جواب لین جی ہدایت جسٹس ارباب محمد طاہر ریمارکس ڈیندے چھو تو صدر جے اختیارن کے بعد میں ڈٹھو ویندو پہری وفاقی حکومت بدھائے تو چھا کرے رہیا ہے لگے تو وفاقی حکومت کے ان معاملے میں کا نہ ہے धांधली जा इल्जाम लगाईंदड़ अञा ताईं को भी सबूत न आहे ॾिनो पीपल्स पार्टी अॼु बि धांधली जो शोर करे रही आहे पर शिदत घटि अथसि वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त धरणे वारा आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन रोकण जा ख़्वाहिशमंद हुया पर नाकाम थिया कानून हथ में खणंदड़ कानून खे मुंहुं ॾींदा
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया जैसे मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: अजरक के रंगों से रंगी
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
4: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जी एफ एम 91.6।
1: It's 3:30.

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव सही नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: नौजवान व्यापारी मीर रज़ा वारसन इनकार करे छो लगवा फहमीदा पिताफी की बाजियाबी बाबत डीजी रिपोर्ट रद्द सख्त कावड़ जो इजहार फहमीदा डीआईजी सखर अदालत के बुधा तो फहमीदा पिताफी की बाजियाबी लाइ गडियल जांच टीम जोड़ी वही है मुख्तलिफ इलाकन में सर्च ऑपरेशन जारी है महीने की मोहलत डनी वे अदालत रिमार्क्स डींदे जूनती कराए सके तो ना करे घुर्बल है 15 दिन अंदर फहमीदा के बाजियाब कराए पेश न कर वो तो जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वी सेहत में कोर्ट खिलाफ एहतजाज जारी सिंध के सदे निकरंदड़ शाखन में पाणी कोर्ट खिलाफ रैली कढी धरणो आयो वियो अठहठ मोरीअ में
1: KTN News।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6।
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: हिन मिटीअ जे रखे जी वधाइण लाइ सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला जंहिं नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि
3: खूबसूरत और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए और चमकदार 2 दिन में और दे कुदरती असली ग्लो. ब्यूटी
0: हर दिन हर जिंदगी की लहर. GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया मिट्टी जो मान वधाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोला
1: फकीर सोजन वरम फौरी खत्म पी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया मिट्टी जो
5: वगे शुरू थी। पोलिंग शाम 5 वगे तई जारी रही। सेक्रेटरी जा इंतजाम इंतहाई दांदली जा इल्ज़ाम लगाईंदड़न अञा ताईं को भी सबूत नाहे डिनो। पीपल्स पार्टी अज भी दांदली जो शोर करे रही आहे पर शिद्दत घट आहे। वजीर आजम जे सियासी मामलन बाबत सलाहकार राणा सनावला जो चवण हो त धरणे वारा आजाद कश्मीर जी इलेक्शन रोकण जा ख्वाहिशमंद हुआ पर नाकाम थिया आहिन। कानून हथ में खणंदड़ कानून के मोह ॾींदा। पीपुल्स पार्टी जा एक भेरो बीहर आजाद कश्मीर के चूंडन में नून लीग ते दांधलिन जा इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शैला रजा जो चवण हो त नून लीग आजाद कश्मीर में सरेआम दांधलियूं करे रही आहे। सेनेटर परवेशा खान चयो त आजाद कश्मीर में बाह एक वफाकी वजीर जे बयान ते लगी। शर्मिला फारूकी जो चवण हो त पंजाब जे वजीरन जो कम रुगो पीपुल्स पार्टी ते तनकीद करणी आहे। लाहौर समेत पंजाब जे कंहिं बि शहर में ॿार तोड़े औरतूं महफूज़ न आहिनि। पंजाब हुकूमत घट में घट सूबे में औरतुनि खे तहफ़ुज़ ॾे।

ट्रंप इंतज़ामिया ऐं फ़ौजी क़यादत खे आम्हूं साम्हूं आणे छॾियो। अमरीकी जनरल्स ईरान जंग मां ॿाहिरि निकिरण जा रस्ता ॻोल्हण लॻा। अमरीकी ख़बरू इदारे CNN जी दावा। CNN जी रिपोर्ट स्टाफ जे चेयरमैन जनरल डेन केन ईरान जंग मां ॿाहिरि निकिरण ऐं फ़ौजनि खे महफ़ूज़ रखण जो रस्तो ॻोल्हे वरितो आहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि ओमान ऐं ईरान में आबदा हुरमत बाबति मुआदो बि अमरीका जे करे देर जो शिकार थी रहियो आहे।

आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त ख़ुसूसी मरबड़ाइण हिक महज़ब ऑटिज़म खां मुतासिर ॿारनि खे तालीम तरबियत ऐं बराबरीअ जा मौक़ा फराहम करणु असांजी गाहे। ऑटिज़म खां मुतासिर ॿारनि जूं सलाहियतूं गैर मामूली आहिनि, उन्हनि खे अॻिते वधण जा भरपूर मौक़ा फराहम करणा पवंदा।

0: सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्द फितना तहत कार्रवाई जारी पंज खालसी दहशतगर्द मारजी वया सिक्योरिटी जरिए मौजे पंज चेन दौरान दहशतगर्दन के मारे वो हथियार ए बारूदी मवाद भी हथ मारजी
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीएफएम 91.6 91.6

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Remit, Bank Al Habib, Rishto Bharose Jo.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ आसूरती, हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार, ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
6: जीए एफएम नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहियूं सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज़।
2: GAFM Network, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर प्यारी तारीखी आवाज फकीरी क्ली हीट
1: के लिए मुफीद है।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट।
5: वज़ीर त मका गडियल दिफ़ाई मुआहिदो तारीख़ी कामयाबी आहे। आज़ाद कश्मीर जी चूंडुनि में कश्मीरी अवाम नून लीग खे भरपूर मोट ॾिनी। वफ़ाक़ी काबीना खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त मका दिफ़ाई मुआहिदो कंहिं ख़िलाफ़ न आहे पर ख़िते जी अमन सलामती ऐं खु़शहाली लाइ आहे। दिफ़ाई मुआहिदे जो मक़सदु कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिनी मुल्कनि ते समझो वेंदो। वज़ीर आज़म चयो आहे त फितने ख़्वारिज खे हर क़ीमत ते अंजाम ताईं पहुचाईंदासीं। आज़ाद कश्मीर जे भूंड डिवीज़न जे ॿिनि ज़िलनि में पोलिंग जो अमल मुकमल। वोटनि जी गणप जारी। भूंड डिवीज़न जे ॿिनि ज़िलनि जे चइनि तकनि ते वोटिंग थी। 82 उमेदवार मैदान में लथल। सुबुह जो 8 वॻे खां शुरू थियल पोलिंग शाम जो 5 वॻे ताईं बिना कंहिं वक़्फ़े जे जारी रही। सेक्यूरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त रखिया विया।
6: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में
7: मयार जो सोना यूरिया।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधिक मान वधायण लाए तमासा गदाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जें जो मोती जड़ो दाणो छकाई करण में आसान दे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: मम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6
1: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: अभी बुधोपिया जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

पियारी ऐं बिस्किट ॾिना, चयऊं एड्रेस ॾियो, अमां खे सवाल मोकिलींदासीं, उन्हनि जा जवाब ॾिजो। पेशी खां अॻु अयाज़ लतीफ़ अली जो चयो त नई सिंध पार्टियुनि खां मथां ई ऐं हिकु ई एजेंडा ते बीठल आहे। सिंध सिंधनि जी तारीख़ी वतन आहे, सिंध हिकु हुई ऐं सदाई हिकु ई रहंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अछा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो। अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ठहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 8 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम। दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: अब आप सुनेंगे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुल।
6: लाइ डी आई टास्क ॾेई छॾियो आहे। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ बि नए सिर कम कयूं पिया। संगरार में ॿीहर कुझु माण्हुनि खां इंक्वायरी कई आहे पर केस में का ख़ासि शइ नाहे मिली। आई जी सिंध जावेद आलम वॾो सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मीर रज़ा वारो वाकियो अफ़सोसनाक आहे। हुन ते नई टीम कम करे पई। जांच मुकमल थियण बाद जांच बाद समूरियूं हक़ीक़तूं साम्हूं अची वेंदियूं। उबावड़ो में फरार थियल धाड़ेरनि खे ॿीहर रियायत न ॾिनी वेंदी। गफ़लत कंदड़ पुलिस अहलकारनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई वई आहे। आई जी सिंध जी सदारत हेठि ऑपरेशन निजात मेहरान बाबति आला सतह इजलास बि थियो। DIG सखर ऐं लाड़काणे जे कचे में कार्रवाइनि बाबति ब्रीफिंग। आई जी सिंध पारां ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं वधीक असराइतूं बढ़ाइण जी हिदायत।

0: क्वेरी, एक इंक्वायरी के लिए सवाल भिजवा रहे हैं, आप मेहरबानी करके उसके जवाब हमें भिजवा दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो सवाल आप पूछेंगे वो कौन सी मेरी तकरीर या मेरी कौन सी गुफ्तगू या कौन सी डेट के हवाले से आप सवाल पूछना चाहते हैं।
1: तो बाबा सवाल कैसे पूछी, कहड़ी गाल से तकलीफ आ, कहड़े मसले आते में हो, कैसे करे तभी परेशान हो, आपको करे सुनते की कहड़ी हाल, कहड़े मौको सवाल के नतो बने सिंध में आप ही करे बेटन, इनके सिंध की गाल छोड़ भी बने।
0: ये सिंध हमारा वतन है, हमारी जमीन है और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सब ने मिलके बने। सिंध को मसाइल की तरफ न धकेलें, सिंध को इस तरह चलाएं कि सिंध के लोग काबिले फख्र अंदाज में कहें कि हम अपने वतन के लिए कुछ करेंगे, उनके हाथ सरों पे न हो कि हमारा पानी भी गया, हमारी जमीन भी गई, वसाइल भी। पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। सिंध हजारों सालों से एक धरती, एक जमीन, एक वतन है और सिंध ने पाकिस्तान बनाया है, सिंध फाउंडर है।
2: कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो जी एनसीसीआई में पेशी सण से यकजहती तौर हजारे धरती धणी बे एनसीसीआई ऑफिस बाहरा गड थी वया। पेशी बाद अयाज लतीफ पलीजो चयो त एनसीसीआई वारन चाय पियारे ए बिस्किट दिना, चयों एड्रेस दियो अवां के सवाल मोकलींदासीं, उन्हनि जा जवाब भी डिजो। पेशी खां अॻु अयाज लतीफ पलीजो चयो त नई सिंध पार्टियुनि खां मथां ई ऐं हिकु ई एजेंडा ते बीठल आहे, त सिंधियुनि जी तारीख़ी वतन आहे, सिंध हिकु हुई ऐं

ऐं वफ़ाक़ी काबीना मक्का गॾियल दिफ़ाई मौला ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म चयो आहे त मक्का दिफ़ाई कंहिं बि सूरत में जारी मुल्कनि विच में खिती ऐं ख़ुशि। वज़ीर आज़म तहफ़ुज़ जी ज़िमेवारी हथियारबंद फ़ौज

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध पारां ॾोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक असराइतियूं बढ़ाइण जी हिदायत। आज़ाद कश्मीर जे भोंट डिवीज़न में चइनि तकनि ते पोलिंग जो अमल मुकमल थियण बाद वोटनि जी ॻणप जारी। भोंट डिवीज़न जे ॿिनि ज़िलनि जे चइनि तकनि ते थियल चूंड में ॿिनि ते पीपीयू उमेदवारनि खे सरसी, हिक सीट ते नवाज़ लीग जो उमेदवार ऐं हिक ते मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो उमेदवार। अॻिते पोलिंग दौरान सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बि इंतिहाई सख़्त रहिया। दांधलीअ जा इल्ज़ाम लॻाईंदड़नि अञा पर घटि आहे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त धरणे वारा आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन रोकण जा ख़्वाहिशमंद हुआ पर नाकाम थिया आहिनि। कानून हथ में खणंदड़ कानून खे मुंहुं ॾींदा। पीपुल्स पार्टीअ जा हिकु भेरो ॿीहर आज़ाद कश्मीर जी चूंडुनि में नून लीग ते दांधलियुनि जा इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शैला रज़ा चयो त नून लीग आज़ाद कश्मीर में सरेआम दांधलियूं करे रही आहे। सेनेटर पलविशाह ख़ान चयो त आज़ाद कश्मीर में बाह हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जे बयान ते लॻी। शर्मिला फारूकी चयो त पंजाब जे वज़ीरनि जो कमु रुगो पीपुल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करणु आहे। लाहौर समेत पंजाब जे कंहिं बि शहर में ॿार तोड़े औरतूं महफ़ूज़ न आहिनि। पंजाब हुकूमत घटि में घटि सूबे में औरतुनि खे तहफ़ुज़ ॾिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत ॿियनि कोर्ट्स में जजिस जी मुक़ररी वारी समरी मंज़ूर न थियण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदर ऐं वज़ीर आज़म जे सेक्रेटरीज़ ऐं कानून वारी वज़ारत खे नोटिस जारी करे छॾिया। सुभाणे जवाब ॾियण जी हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर रिमार्क्स ॾींदे चयो त सदर जे अख़्तियारनि खे बाद में ॾिठो वेंदो। पहिरीं वफ़ाक़ी हुकूमत ॿुधाए त छा करे रही आहे। लॻे थो त वफ़ाक़ी हुकूमत खे हिन मामले में का बि दिलचस्पी नाहे। खातून अवल आरी ऐं वॾे वॾो आसफा भुटो सरदार होटल जो इफ़्तिताह।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो। अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: है अपना घर मटियारी और मटियारी की आप
1: फकीर तेज आराम अतमयार
2: हीकर तलब कीजिए
3: सुने जी एफ एम
4: सोना मिट्टी जो
5: और खुशहाली को फरोग दिया जाए।
6: वफाकी काबिना मक्का गदल दिफाई मुआहदे के तो मकसद कहम पे सूरत में मुल्क विच में खिते में अमन सलामत सहकार जो तसलसल आयो। शहबाज शरीफ यो भी चाहिए आजाद कश्मीर की अवाम मुस्लिम लीग नून के वोट दिना कश्मीरी अवाम जो वोट नवाज शरीफ के भरपूर एतमाद जो इजहार है। ईरानी परदेही वजीर

0: नेट KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
3: GAFM 91.6।